आप सुन रहे हैं रेडियो नारापन निर्वाधन नाइट्स एंड मैं हूँ सबके दिल का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। एंजॉय किया आपने गाना एंड अगली खबरें कुछ बॉलीवुड के बारे में हैं। तो इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की बंटवारा 1947 और इमरान हाशमी की आवारापन 2 के बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार आवारापन 2 ने ओपनिंग डे के लिए 2.5 करोड़ की शानदार एडवांस बुकिंग कर ली है, जो कि बंटवारा 1947 से काफ़ी ज़्यादा आगे है। एंड आवारापन 2 का क्रेज बहुत सालों के बाद आ रहा है एंड फिर से वही लाइक फीवर जो है वो दिखाई दे रहा है ऑडियंस में। ऑडियंस चाह रही है कि आवारापन 2, मतलब इतना एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहा है ऑडियंस के लिए कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो ये फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे सब कुछ होने वाला है। एंजॉय करते हैं अगला गाना एंड इमरान हाशमी तो है ही, मतलब फिल्म तो लाजवाब रहने वाली है।

वेरापड़नी वना नाइट्स एंड सलमान खान और संजय दत्त के अभिनय से सजी इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर फिल्म सेवन डॉग्स भारत के सिनेमा घरों में जल्द ही रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें संजय दत्त का एक धमाकेदार कैमियो रोल दिखाई देने वाला है। संजय दत्त एंड सलमान खान जब भी साथ साथ आते हैं, चल मेरे भाई मूवी तो आपको पता ही होगा, चल मेरे भाई में उनकी जो केमिस्ट्री दिखाई गई है वो केमिस्ट्री इतने लंबे टाइम तक तो स्क्रीन पर देखने नहीं मिलेंगी, क्योंकि संजय दत्त बाबा का ये जो है कैमियो रोल होने वाला है ऐसा कह रहे हैं। एंड वंस फिल्म की रिलीज डेट एक बार पता चल जाए क्या है तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि थोड़ा 19-20 चल रहा है आई गेस कि फिल्म कब रिलीज़ होने वाली है। लेकिन सूत्रों के अनुसार 21 अगस्त 2026 को ये रिलीज़ हो सकती है फिल्म, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, सुनते रहिएगा रेडियो।

जरूर मिलने वाली है। फिल्म हैवान का पहला टीजर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और नवाब सैफ अली खान करीब 18 साल बाद बड़े पर्दे पर एक साथ वापसी कर रहे हैं। दोनों की एनर्जी आ जाती है स्क्रीन पर तो स्क्रीन मानो अलग ही लेवल की हो जाती है। फिर उनका डांस हो या फिर एक्शन हो, दोनों भी जो धाकड़ परफॉर्मेंस देते हैं वो तो अलग ही लेवल की होती है। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी गाने की डांसिंग स्टेप्स आज तक 90s के कीड को याद है। मतलब कैन यू इमेजिन फिर से ये जो सारा कुछ है ये रिक्रिएट होने वाला है तकरीबन 18 साल बाद। 18 साल कितने जल्दी बीत गए, ऐसे लगता ही नहीं कि 18 साल मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी ये गाने को हो चुके हैं। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये अगला गाना। आप बने रहिएगा आपके पसंदीदा रेडियो चैनल।

जो एवरीबॉडी आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा निर्वाणा नाइट्स एंड हम बात कर रहे थे बॉलीवुड की कुछ खबरों के बारे में। तो जाह्नवी कपूर पहुंची कोर्ट। जी हां, अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने अपने पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है एंड अदालत ने भी उन्हें जो भी उनके वीडियोज वायरल हो गए थे वो हटाने के अंतरिम आदेश जो है वो जारी कर रखे हैं। जी हाँ, उसके बाद जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर कंगना रनौत ने एक बार फिर बयान जारी कर दिया है। जेन जी के खिलाफ उन पर उन्होंने निशाना साधा है और उन्हें कुछ अलग अलग शब्दों के माध्यम से नवाजा है। तो जो पुरानी कमेंट उन्होंने कही थी वो पुरानी कमेंट पे भी उन्होंने आज सफाई दी है। तो आपने सोशल मीडिया पर अगर न्यूज़ देखी नहीं है, सुनी नहीं है, तो सोशल मीडिया आप स्क्रॉल करते करते आप एक बार चेक कर सकते हैं और यू नो एंजॉय करते हैं ये अगला गाना, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है कि ये मौसम में अच्छा गाना प्ले करना तो बनता है। सुनते रहिएगा रेडियो।

0: एक्टिंग करने की बारी आली।
1: जी हाँ, सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को खारिज कर दिया गया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि अजय देवगन अनूप सोनी को रिप्लेस कर रहे हैं। वो सिर्फ कुछ खास एपिसोड के लिए स्पेशल होस्ट के रूप में नजर आएंगे, क्योंकि पहले ऐसी खबर आई थी कि अजय देवगन ही क्राइम पेट्रोल के पूरे एपिसोड्स को होस्ट करने वाले हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये महज एक अफवाह थी ऐसा कहा जा रहा है। कुछ लाइक फिल्मों में जैसे कैमियो रोल रहते हैं, उसी लिए उस प्रकार से आई मीन टू से कुछ खास एपिसोड के लिए जो है अजय देवगन स्पेशल होस्ट के रूप में नज़र आएंगे, लेकिन होस्टिंग करना आई गेस अजय देवगन के लिए ये काफ़ी आसान रहेगा। एंड उनको एज अ होस्ट देखना ये ऑडियंस के लिए चर्चा का विषय बन चुका है एंड एक्साइटमेंट का विषय भी जो है वो बन चुका है। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना।
2: प्यार है इंडिया से, यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। अब वक्त हो चुका है सबसे पसंदीदा हमारे लिसनर्स के सेगमेंट का, कहानी का। तो शिमला की खूबसूरत वादियों के बीच एक पुराना सा कैफे था जिसका नाम था द सीप। इस कैफे के मालिक एक 70 साल के बुजुर्ग थे जिन्हें सब दादू कहते थे। उस कैफे की एक अनोखी बात यह थी कि वहाँ कोई मेन्यू कार्ड नहीं था। दादू कस्टमर का चेहरा देखकर ही खुद ही चाय बनाते थे। एक दिन शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कबीर उस कैफे में आया। कबीर बहुत तनाव में था, उसका फ़ोन लगातार बज रहा था और वो चिड़चिड़ा हो रहा था। उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, दादू जल्दी से एक कड़क कॉफ़ी लाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। दादू मुस्कुराए, वे अंदर गए और थोड़ी देर के बाद मिट्टी के कुल्हड़ में गर्मा गर्म इलायची और अदरक वाली चाय लेकर आए। अभी क्या होने वाला है कहानी के आगे वाले एपिसोड में।

क्या हुआ? कबीर ने कॉफी मांगा और दादू जो है वो कड़क चाय लेके आए। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। कबीर ने गुस्से में कहा, मैंने कॉफी मांगी थी, चाय नहीं, ये क्या लेके आए आप? दादू ने शांति से कहा, बेटा एक बार पीकर तो देखो, ये साधारण चाय नहीं, इसे हमारे यहाँ वक्त की चाय कहते हैं। कबीर ने चिढ़ते हुए चाय का पहला घूंट लिया। जैसे ही चाय उसके गले से नीचे उतरी, कैफे की घंटी अचानक बजना बंद हो गई। बाहर सड़क पर चल रही गाड़ियां थम गई, हवा में उड़ते हुए पत्ते हवा में ही रुक गए, पूरा संसार मानो फ्रीज हो गया। कबीर घबरा गया, ये क्या हुआ, सब कुछ रुक क्यों गया? दादू आराम से कुर्सी पर बैठते हुए बोले, घबराओ मत, जब तक इस कुल्हड़ में चाय है तब तक पूरी दुनिया का वक्त तुम्हारे लिए रुक गया है। तुम हमेशा कहते हो ना, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, लो अब तुम्हारे पास ही सारा वक्त है, आराम से चाय पियो।

लगता होगा मैं बस पैसे के पीछे पीछे भागा। तुम्हें ना दिखे मेरे माथे की शिकन, तुम्हें दिखे मेरे बाएं हाथ पे रोलेक्स, तुम्हें नहीं दिखता मेरे दाएं हाथ पे बंदा काला धागा। 10 साल से तुम्हें दिखता होगा बादशाह कितना फेमस है, तुम्हें नहीं दिखता मेरे माँ बाप कितने बेबस है। 10 साल से अकेले अपनी पोती के साथ भी ना खेले, उन्हें फिर से जवानी दे दे रब चाहे मुझसे तू मेरा सब ले ले।

सब तुमको बस देखो ध्यान से, देखो गौर से, देखो गौर से, करो थोड़ा फोकस।

तुम्हें दिखता है पैसा, तुम्हें नहीं दिखती है टेंशन। तुम्हें दिखते हैं बॉडीगार्ड, पर तुम्हें नहीं पता कि वो क्यों है मेरे साथ। तुम्हें दिखते हैं मेरे दिन, तुम्हें नहीं दिखती है मेरी रात।

चिल्लाना तुमने नहीं देखा टाइम वो जब मैं रहता था साइलेंट। देखो ध्यान से, देखो गौर से, देखो गौर से, करो थोड़ा फोकस। ऊपर से ही दिखता है सब तुमको, बस देखो ध्यान से है।

दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी।

ये सब देखकर कबीर हैरान था। उसने दूसरा घूंट लिया। चाय के स्वाद के साथ ही उसे बचपन के दिन याद आने लगे, जब वो अपनी माँ के हाथ की चाय पीकर स्कूल जाता था। तीसरा घूंट लेके ही उसे याद आया कि कैसे वो पैसों की दौड़ में अपनी पत्नी और बच्चों को वक्त देना भूल गया है। जैसे जैसे चाय खत्म हो रही थी, कबीर का तनाव पिघल रहा था। उसने पिछले 5 सालों में पहली बार इतनी शांति महसूस की थी। उसने बिना किसी फ़ोन कॉल या ईमेल की चिंता किए करीब 20 मिनट तक सिर्फ उस चाय के स्वाद और शिमला की वादियों का मज़ा लिया। जैसे ही उसने चाय की आखिरी बूंद पी, कुल्हड़ खाली हो गया। अचानक बाहर गाड़ियों की हॉर्न फिर से आने लगी, पत्ते ज़मीन पर गिर गए और दुनिया वापस चलने लगी। कबीर की आंखों में आंसू थे। उसने दादू के सामने हाथ जोड़कर कहा, दादू आज आपने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया है। मैं कल ही अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जा रहा हूँ। दादू ने हंसते हुए कहा, घड़ी की सुइयां तो चलती रहेगी बेटा, बस तुम ज़िंदगी जीना मत छोड़ना, ज़िंदगी का आनंद लेना मत छोड़ना।

सब लोग अक्सर अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि ठहर कर जिंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। कभी कभी पॉज बटन दबाना और अपनों के साथ वक्त बिताना पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती होता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि भाग दौड़ तो चलती ही रहेगी एंड करनी भी चाहिए। एट द एंड करियर मनी मैटर्स, क्योंकि आजकल की इस दुनिया में आदमी की पहचान उसके पैसों से ही होती है। इसलिए पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, और आपके पास अगर हो गए पैसे तो लोग कहेंगे भाई साहब आप हो कैसे। तो पैसे कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन एक टाइम के बाद थोड़ा सा पॉज लेकर छुट्टियों पर जाना, वैकेशन पर जाना, ये काफ़ी ज़रूरी है। पॉज का बटन थोड़ी देर रहता है तो रिचार्ज जो है ऑटोमेटिकली आप लोग हो जाते हैं। एंड पॉज का बटन दबाना लाइफ में कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। ब्रेक लेने का ब्रेक जरूरी हो जाता है। एंजॉय करते हैं, अगला ही गाना बनी रहेगा।

लहजा थोड़ा ठंडा रखिए जनाब, गर्म तो हमें सिर्फ चाय पसंद है। जी हाँ, मैं यही कह रहा था कि यार हमेशा काम रहना बहुत ज़रूरी है। लाइक क्या होता है, गुस्से गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, मतलब बिना सोचे समझे बहुत बार सामने वाला पर्सन हर्ट हो जाता है। तो जब गुस्सा आता है तो गुस्सा आने के बाद थोड़ी देर अपने काम रहना चाहिए, उसमें ही भलाई है, उसके बाद फिर जो कहना है वो कह दो। लेकिन गुस्से के टाइम में वो जो टाइम पीरियड है ना, वो टाइम पीरियड में कुछ भी नहीं कहना है, बस काम रहना है, उससे रिश्ता जो है वो आपका बच सकता है। एंड 7 से 10 का गिनी टाइम आप लोगों के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कल मिलूंगा आप सभी से रेडियो नायरा पर, निर्वाणा नाइट्स ये शो पर। 7 से 10 हमारा ये शो चलता है। एंड कैसे चल रहा है आप सभी का डिनर? डिनर होने के बाद जो स्वीट की क्रेविंग है उसे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। एंड कल मिलूंगा, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: एक हो गए हम और तुम,
2: हम
1: तो उड़ गए निंदेरे।
3: रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज बाय AR रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नाना 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नाना 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

दिलों का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 14.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 एफएम, 99.9 एफएम, एसडी 44 1090 एएम. पक्का देसी, पक्का लोकल.

रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स। रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

Hello, hi, namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and Talk. Well, good morning, morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But speaking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabre sunane wali hu. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पका देसी पका लोकल.

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, HD4, 49 AM, 99.9 FM, HD3 for Telugu, Naira. मैं हूँ आपके अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक्स।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Lal ke liye jaiye gari, sundariye Monica ke saath Radio Naira, pakka desi, pakka local.

0: barrel.
1: Yeah. भाई तेरा बस लिख तो गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

Is the multi-dalgari kebab one more time? Welcome, hai ji, on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 for 90 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu. Naira se, main hoon aapki apni Monica, aur aap sun rahe hain Triangle Dudes and Talk. ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 415 डॉट विक्स बोरो स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉट विक्स बोरो स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव. फील द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक रेसिंग. पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉट विक्स बोरो. इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द नास्कर्स मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक. Don't miss epic tailgate and high-stake racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Naira, pakka deshi, pakka local.

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा सेम है, हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक्स। विलियम ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिस सप्लाई एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन्स। With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstone to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Braver, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइन।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

0: ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 4090 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून सन टॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM LG4, 49 AM, 99.9 FM LG3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपके अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूम्स एंड टॉक। हमारे ट्रायंगल में जॉन पार्डी इन कॉन्सर्ट सेलिब्रेट होने वाला है। कंट्री म्यूजिक स्टार जॉन पार्डी इज ब्रिंगिंग हिज सिग्नेचर हॉन्की टॉन्क एनर्जी टू द किड रिवर स्टेडियम ऑन जुलाई। Can't miss the night under the lights, known as Mr. Saturday Night, Party is said to deliver an unforgettable show packed with the chart-topping and topping it is high and energy performances. Whether you are backbone in wound for the summer or just looking for the perfect night out, this is your excuse to grab your friend and make it night to remember. मजा आने वाला है। इसकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पता दे पता लोकल।

You're romantic, Donna. आपने enjoy किया on 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 49 AM and 99.9 FM, SD34, पहले जो Naira Fame है. हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Final Rules and Talk. हमारे ट्रायंगल में 2060 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है. इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल्स आउट द पर्पल कार्पेट एवरी अदर समर ट्रांसफॉर्मिंग विंस्टन सलेम इनटू द मेगा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर विद मोर देन 120 परफॉर्मेंसेस इन नंबर ऑफ द सिटी वेन्यूज. Artists, audiences, and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week through many stage production, engaging program, and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं. इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर. पक्का देसी, पक्का लोकल.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

सॉन्ग सुन जाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 49 AM 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डूंस एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी चेरी पॉइंट एयर शो होने वाला है। हेडिंग द 2026 इवेंट इज द रिटर्न ऑफ लेजेंडरी US नेवी ब्लू एंजल्स जॉइंड बाय एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्ट दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड कैप्टिवेट फन फेवरेट performances such as jet truck, parachute, jump team and aerobatic pilot and Randy Ball, RJ Glitter and Tom Larking are already slated to return. The show is free and open to the public throughout. The base pass is required for entry. For more information, check their website. Filhal kahin jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Naira, Pakka Desi, Pakka Local.

अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु. नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक. वेल मॉरिसले रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है. इंट्रोड्यूसिंग रच्चा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद अब आपके शहर में. गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून. राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

वेलकम है ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 49 AM एंड 99.9 FM HD3 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून्स एंड टॉक। कहा नारा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें, ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं, या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ऑन 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

फैंटास्टिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूंस एंड टॉक उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमे है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान 9 जेम्स ज्वेलरी जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट 9 जेम्स ज्वेलरी वेस्ट कैरी 27519 अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454 फिलहाल कहीं जाइए या नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल

गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira. आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून्स एंड डॉग। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu। रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल, कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स ऑन टॉप पर, ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल, अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय योर डे, बाय बाय।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

वो गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन है चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ऐ

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9 Naira me kho jao Pakka Desi. Pakka Desi. Hey guys, this is Jyoti. I am here with you from 5 to 7 and hum baat karenge aaj different topic pe only on Radio Naira 99.9 FM HD4 and 101.9 FM 1490 AM. So aaj hai Friday, aaj ki shaam hai aap sab ki mere naam aur meri hai aap sab ke naam. Trade in. So aaj main layi hu thoda sa different topic. Like I always say, I'm a big Bollywood maniac. Yeah, something like that. Aaj hum baat karenge different dialogues from different movies and see ke how much you guys want remember aur kitna hum peeche ja sakte hain. It's going to be a mixed bag from old and new and something like that. And accordingly, hum gaane sunenge jo maine aapke liye choose kare hain. Thodi si research kari hai meri team ne, which is I, me and myself. Hey, is pe hasna tha, joke tha. Anyway, so हम शुरू करते हैं आज का सफ़र बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर एक्सक्यूज से. लेट हो जाओ, गलती हो जाए, प्लान बिगड़ जाए, एक लाइन में सब कुछ ठीक कर देता है. और ये लाइन राज ने सिमरन को बहुत साल पहले, लाइक 1995 में रिलीज हुआ था, क्योंकि इट वॉज फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने कॉलेज बंक कर कर किया था. डोंट ट्राई टू इवन गेस माई एज, बट 95 में ये रिलीज हुई थी. और तब राज ने एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज मारा था, ये डायलॉग जो आजकल हर बंदा मारता है जो उस एरा का है. एंड एवरीबडी हु रिमेंबर्स दैट, राज और सिमरन का प्यार, मोहब्बत और एक्सक्यूज. एंड वो क्या है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सेनोरिटा या सेन्योर. So, ये आपने मुझे बताना कि हैव यू एवर यूज दिस. आई थिंक इट हैज़ बिकम रियली अ ट्रेंड, एट लीस्ट एट दैट टाइम. बट आजकल भी, यू नो, व्हेन देर आर एनी पार्टीज और एनीथिंग, कुछ गलत होने लगता है या हो चुका होता है, तो ये लोग एक दूसरे को देखते हैं, आप भी क्या बोलूँ. अगर किसी का मूड थोड़ा सा ख़राब होता है, उसका मूड थोड़ा सा चेयर अप करने के लिए, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, यू विल गेट एडजस्टेड टू दैट. यू नो, दिस लाइन कैन एक्चुअली वर्क एनीवेयर. किसी का मूड खराब हो, किसी को अगर बहुत जोर से गुस्सा आ रहा हो मम्मी को, कोई बात नहीं मम्मा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, माफ़ कर दो ना. सो इट डिपेंड्स हाउ यू गोना यूज इट. बट एनी हाउ, आई जस्ट ब्रॉट दीज डिफरेंट डायलॉग्स फॉर यू एंड I hope you guys like it. And if you get a chance to call me and talk to me, let me know that any of these dialogues, if you have ever used in life, and any of your dialogues, matlab jo aapne kabhi soche hain, aapke favorite hain kisi movie se ya kuch, and I'll try to play that song for you from that movie if you like any of the dialogues from the, any other movie. But abhi शो अभी चलता रहेगा तो हम बातें करते रहेंगे. फॉर नाउ आई एम गोना लेट यू लिसन टू द Beautiful numbers from the same movie. Jo, oh my God, I don't know. 100 years tak chal sakti hai movie. So stay tuned, do not go anywhere, and let's listen to these beautiful numbers.

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति और आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 एंड 101.9 एफएम 1490 एएम। कैसा रहा गोइंग बैक डाउन द मेमोरी लेन? मेरे ख्वाबों में वो आए जो आके बोलता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। या दिस वॉज एक्चुअली द बिगनिंग ऑफ फॉलिंग इन लव विद शाहरुख खान, राइट? सम ऑफ यू गर्ल्स आउट देयर, ये मस्ट बी अग्रीइंग विद मी। सो दिस वॉज फन टाइम्स एंड उसके बाद बस शाहरुख से मोहब्बत होती गई होती गई होती गई कुछ लड़कियों की, राइट? I am still debating, so don't count me in yet, if that's your question at all. अभी शाहरुख को कहाँ छोड़ दें, अभी शाहरुख के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो उनकी एक ऐसी मूवी आई थी जिसमें एक ऐसा डायलॉग था जो आई थिंक जब लाइफ बहुत टाइट हो जाए, ड्रामा पीक पे हो, तब एक फिल्मी बंदा ही ऐसी एक लाइन बोल सकता है, राइट? ब्रेकअप हो गया, जॉब स्ट्रगल्स हैं, या घर की ईएमआई भरना है, या गाड़ी का ईएमआई भरना है, आई शुड जस्ट से द पेमेंट्स, तब हम एक डायलॉग ज़रूर बोलते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना? मुझे ऐसे लगता है कि इवन दो इट इज़ जस्ट अ सिंपल डायलॉग, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बट इट एक्चुअली रेजेस होप, इट रेजेस होप फॉर समबडी हु हैज जस्ट हैड अ ब्रेकअप। तो उसको समझाने के लिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लाइक जिंदगी ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ ब्रेकअप हुआ है, सो चिल, रिलैक्स, इंजॉय करो, समोसे खाओ, चाय पियो, लाइफ इज़ गुड, जी लो अपनी ज़िंदगी टाइप्स। ये एक दूसरा डायलॉग है। और अगर जॉब स्ट्रगल्स हैं, जॉब नहीं मिल रही, प्रॉब्लम्स है, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर फेसिंग दीज डेज, आई ऑल्सो फेस्ड वेरी रिसेंटली, सो उसमें भी वी कैन यूज़ दिस डायलॉग वेरी नाइसली, दैट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कि रिलैक्स करो, मिल जाएगी, जस्ट कीप अप्लाइंग, सो डोंट गिव अप होप। सो दिस बेसिकली डायलॉग रियली क्रिएट्स होप इन लाइफ, सो इट इज़ जस्ट नॉट अ डायलॉग, इट सीम्स दैट वेन एवर वी से टू समबडी, it's more like we are bringing hope in their lives, so which is a good thing, so continue doing that if you're already doing, and let's listen to a couple of these songs from our favorite Shahrukh's Om Shanti Om. Yeah, maine bol diya our favorite doesn't mean I'm a big fan of, just for the record. All right, stay tuned, do not go anywhere, and let's listen to these kaun sa wala hai yahan pe, something like Deva.

0: Across 400 years, four daughters rise with a single heartbeat for the motherland. Join Four Dimensions Entertainment for an unforgettable English play celebrating India's women warriors. Virangana on Sunday, August 30th, 3 p.m. Stewart Theatre. Group, student and senior citizen discounts available. Purchase tickets 4de.eventbrite.com.
1: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition and unforgettable flavors.
2: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
1: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
2: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: Aap sun rahe hain Radio Nara, 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, Pakka Desi, Pakka Lokal.
4: And welcome back. It just so happened that I am still your host, Jyoti. Aaj ki shaam, aap sab ki mere naam, on Radio Naira, 99.9 FM, HD4 and 101.9 FM, 1490 AM. Hum baat karein kuch amazing se dialogues ki, going back the memory lane and, you know, enjoying those. At least main to enjoy kar rahi hoon, aap logon ka pata nahi, lekin I love these songs. थोड़े से अपीट होने चाहिए, फ्राइडे की रात है, यू नो, थोड़ा सा फन, थोड़ी सी मस्ती. एनीवे, गोइंग बैक टू माय टॉपिक ऑफ डायलॉग्स फॉर गर्ल्स हु आर अगेन शाहरुख खान फैंस, आई एम सो सॉरी, लेकिन इट वाज सुपर अनइंटेंशनल, लेकिन अगली मूवी भी शाहरुख के डायलॉग की है, सो आई एम नॉट रियली सॉरी, आई लाइड. सो सोचो कोई पार्टी सीन चल रहा हो और हमारी पार्टी एक अलग से किसी और मोड में चली गई हो, कुछ शेर व शायरी शुरू हो गया हो, कुछ ड्रिंक्स, फैमिली शो है लेकिन चाय पानी भी ड्रिंक्स ही होता है, सो ड्रिंक्स वगैरह चल रही हैं. ऐसी किसी पार्टी में कभी आपने, आपको किसी ने आके पूछा हो, क्यों भाई इतना क्यों पी रहे हो आज, कोई गम है, और आपने बोला हो, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है. वेल, मैं तो इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि पार्टी है. एनीवे, या सो दिस डायलॉग वाज लिटिल डिफरेंट. आई थिंक दिस वाज डेफिनेटली फ्रॉम लॉन्ग बैक देवदास, जो दिलीप कुमार साहब ने किया था, लेकिन लाइक यू नो दैट ऐसा कुछ डायलॉग जो इतना ज़्यादा रेजोनेट करता है लोगों के साथ, एंड यू नो पीपल रियली डू नॉट फॉरगेट एंड दे जस्ट फाइंड अ मोमेंट व्हेन दे कैन यूज़ दिस डायलॉग इन अ पार्टी और एनीवेयर वेयर यू नो वी आर जस्ट हैविंग फन एंड समबडी इज़ जस्ट कमिंग हियर एंड जस्ट फॉर फन सेक ऑल्सो सम पीपल जस्ट से दैट हे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है, मैं तो इसलिए पीता हूँ कि पारों को भूल जाऊँ. सो this was again another interesting Shah Rukh Khan's amazing dialogue delivery, amazing movie with between Madhuri and Aishwarya. It was very difficult. I'm sure that, you know, practically agar uske paas Gauri Khan nahi hoti to wo thoda sa pareshan ho jate ki kaun si beauty better hai dono mein se, because there is no comparison. So that was a good take on, you know, bringing two beautiful ladies together and beech mein rakh diya Mr. Shah Rukh Khan ko, jo devta hai, devdas bhi nahi hai, devta hai romance ke. So anyhow, this was a great movie. Let's listen to some of these songs from this movie. Dolare, you like that? And maybe Silsila Ye Chahat Ka. So coming up right away, do not go anywhere.

0: 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9 Dairam mein kho jao
1: Pakka Desi. Pakka Desi. मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट पक्का देसी एट रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 एंड 101.9 एफएम 1490 एएम. टाइम है 6 o'clock और हम बात करें आज डिफरेंट डायलॉग्स की, जस्ट फॉर फन, जस्ट बीइंग बॉलीवुड क्रेजी हियर. कुछ कुछ डायलॉग्स की हमने ऑलरेडी बात करी है रिसेंटली. वी जस्ट टॉक्ड अबाउट अ ब्यूटिफुल अमर अकबर एंथनी आइकॉनिक डायलॉग ऑफ मिस्टर बी, बिग बी, not just be. All right, so this one we're going to talk a little bit on a movie that was I think it was released in Hindi and some one of the other language, also not sure was it Tamil or Telugu. I think it was Telugu. Kabir Singh, naam yaad rakhna. Full to gussa, full to charge aur pura filmy swag. But जब कबीर सिंह को इतना गुस्सा आता है तो वो ये भी बोलते हैं. दिस इज अ डायलॉग फॉर वन ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो, आई डोंट नो इफ शी इज लिसनिंग. प्रीति मेरी थी, प्रीति मेरी है और मेरी ही रहेगी. सो टू ऑल द प्रीतीज इंक्लूडिंग माय फ्रेंड, बिकॉज सारी प्रीतीज मेरी फ्रेंड हैं आज की डेट में. सो अब ऐसा कोई डायलॉग जिसमें आप इतना एग्रेशन हो और अपनी बंदी के बारे में इतना यू नो ओपनली और व्हाट डू यू कॉल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द फैक्ट दैट या मेरी बंदी है, उसका नाम है प्रीति और कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा. रिमेंबर दैट मूवी, इट वाज रियली फन वाचिंग दैट. थोड़ी सी ऑफ ओवर द टॉप थी बट स्टिल आई एम श्योर दैट वी ऑल एंजॉयड इट. द फैक्ट दैट शाहिद वॉज रियली ग्रेट, ही डिलीवर्ड दिस मूवी, द डायलॉग्स एंड एवरी थिंग रियली ग्रेट. एंड आई थिंक in Telugu this movie was, it was I do not remember the name of the actor, but I have watched that movie in you know one of the Telugu versions and that was also commendable. It was really delivered really good. So I picked up these couple of songs from this movie Kabir Singh. I hope you guys like it. But before I let you guys go, I have another quiz for you. Ek main dialogue bolne wali hu. आपको मुझे फोन करके ये बताना है कि ये डायलॉग कौन सी मूवी का है. एंड फॉर मोस्ट पार्ट यू गाइस शुड गेस इट, बट लेट्स सी. अगेन द नंबर नोट कर लो, 9199998595. लेट्स सी इफ यू गाइस कैन गेस इट. बट अरे भैया, अंग्रेजी तो ऐसी आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड. यू सी सर, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन लाफ इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. Bharo becomes Baron and Baron becomes Bharo because their minds are very narrow. और आगे शुरू होएगी क्रिकेट कॉमेंट्री जो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बट आई नो दैट ही स्टार्ट्स विद 1972 और समथिंग. सो कॉल करके बताना कौन सी मूवी का. आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस डायलॉग ट्रिविया, सो टू स्पीक. ऑल राइट, लेट्स लिसन टू दिस वन एंड आई एम सो रेडी टू प्ले दीज नंबर्स फॉर यू गाइज. डू नॉट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स रॉक इट.

0: हेल्दी लिविंग मीट्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: चलिए एक बात तो प्रूव हो गई कि हमसे बात करके आप यू विल फील हेल्थी बिकॉज यू नीड टू कीप लिसनिंग टू द हेल्थी स्टफ. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सम हेल्थी डायलॉग्स दैट यू नो दैट हैज रियली दैट हैव बिकम रियली एन आइकॉनिक इन बॉलीवुड. ओके दिस वन इज इट्स फनी इफ आई यूज दैट स्पेसिफिक वर्ड यू वुड नो दैट विच वन आई एम टॉकिंग अबाउट. बट अब एक ऐसा डायलॉग है जो इंडिया का सेल्फ लव का एंथम बन चुका है especially for girls. I don't know about boys, but लड़कियों ने काफ़ी use किया है. एक line जो मिसाल है confidence की, मस्ती की और थोड़ा सा you know somebody's style drama जो वो लेकर आती है और वो है हमारी गीत. Very innocent, but lot of मस्ती, like बिल्कुल बिंदास carefree kind of lady. And you know this movie was again another iconic. I really love this movie Jab We Met. Aur isme jab wo Miss Pooh bolti hain main apni favorite hu to shayad ki shakal dekhne wali hoti hai. Tum kabhi chup nahi hoti na? Nahi abhi tak to nahi. Acha suno main tumhe kaisi lagti hu? Main tumhe pasand ho na tum kahan ja rahi ho? नहीं मैं तुम्हें पसंद हूं ना. ओके तो फिर तो तुम्हें मेरी सिस्टर भी पसंद आएगी. तो ठीक है फाइनल हो गया. मैं तो अभिमन्यु के साथ जो भी उसका नाम था उसके साथ भागने वाली एंड ऑल दैट राइट. बट यू नो व्हाट यू कैन एक्चुअली गेट हुक्ड अप विद माय सिस्टर. शी इज़ जस्ट लाइक मी बट अपेरेंटली हर सिस्टर वॉज डेफिनेटली नॉट लाइक हर. बट इट वॉज रियली फन वॉचिंग दैट मूवी. बबली गर्ल, किसी की कोई परवाह नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. और रिमेंबर वो सीन जिसमें वो छत के ऊपर होते हैं और भागने के लिए बैठे होते हैं. दे आर लिटरली इन गीत्स हाउस बोथ ऑफ देम एंड ही इज़ लाइक तुम टेंशन मत लो, यहाँ से नहीं वहाँ से जाएंगे, सोचो तुम्हारी फैमिली क्या सोचेगी. एंड द परफेक्ट आंसर वॉज मेरी फैमिली है तेनू की. एंड ही इज़ लाइक यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन मोमेंट था शायद के लिए. Yeah, menu ki, do whatever. So that was fun. I really enjoyed that movie, so you can tell, right? Let's listen to a couple of songs from Geet. So, Jab We Met. Stay tuned, do not go anywhere. It was fun.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: पक्का देसी पक्का लोकल एंड मजा ही मजा। एनीवे, हम बात करें खूब सारे डायलॉग्स की आज की डेट में फ्रॉम बॉलीवुड डिफरेंट मूवीज एंड वी आर एंजॉयिंग द सॉन्ग्स टू ओनली ऑन रेडियो नायरा 99.9 FM, HD4 एंड 101.9 FM, 1490 AM। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति, और आज की ये शाम है आप सबकी मेरे नाम। थोड़ा सा टाइम है अभी भी, तो मैं सोच रही हूँ कौन सा पिक करें अब नेक्स्ट डायलॉग। सो सिंस आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गीत, हाउ अबाउट अनदर डायलॉग फ्रॉम अनदर ऑफ हर मूवीज, जिसमें वो ये तो नहीं बोलती मैं अपनी फेवरेट हूँ, लेकिन ये जरूर बोलती हैं, हाउ डेयर यू, तुम्हें कोई हक नहीं तुम इतनी खूबसूरत दिखो, या फिर कौन है ये जिसने दोबारा मुड़कर मुझे नहीं देखा, एटीट्यूड। हाँ, सो आई एम श्योर यू गाइस हैव गेस्ड दैट वन। यस, कभी खुशी कभी गम। वेल, इट इज़ वन ऑफ दोज धर्मा प्रोडक्शंस जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द ड्रामा तो है ही, जिसमें डोर खुलता है, हवा चलती है, इमोशनल ओवरलोड होता है, और माँ को लगता है कि मेरा बच्चा आ गया, और उसके जैसे ही पैर वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर से नीचे धरती पे लगते हैं तो उसको रियलिटी चेक होता है कि मेरी माँ वेट कर रही है, और माँ को वो आवाज़ आती है, आ गया मेरा करण, आ गया, नहीं एक्चुअली करण था या अर्जुन, अर्जुन था उसका नाम, मेरा अर्जुन आ गया। सो उसमें भी आई थिंक देयर वाज वन मोर डायलॉग बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस बच्चन, that was very interesting, and between husband and wife, I do not know if you guys ever used it, but I have used with my husband quite a lot. Keh diya na, bas keh diya, basically means shut up. So anyway, so that was very interesting dialogues, but I think I enjoyed the most was the first two that I talked about from Miss Poo. So that was, those were really my favorites. Other than that, I do have one more trivia for you guys. एक डायलॉग और है बिफोर आई प्ले द सॉन्ग्स फ्रॉम K3G, जो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन मुझे बताना इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू कॉल मी 919-999-8595, या फिर रेडियो नायरा में ईमेल भी कर सकते हो या स्टाफ, यू नो, मुझे बताना कि ये कौन सी मूवी का है। लेट्स सी इफ यू गाइज कैन गेस दिस वन। दिस वन वॉज व्हेन आई वाज इन स्कूल। देखो तो मेरे हाथों की मेहंदी कैसी रची है,
3: अभी मूड नहीं है।
2: आपका मूड ठीक करने के लिए हम कुछ कहें,
3: हमें किसी से कुछ नहीं सुनना।
2: कुछ नहीं, ओके, तो फिर भी हम कह देते हैं, आपको सुनना हो तो सुन लीजिए।
4: एंड वो 3 बीट्स के साथ जो बोलती है,
2: आई
3: लव व्हाट,
2: अभी मूड नहीं है। वेल, मेरे पास और भी है, बट मैं सारा टाइम उसमें नहीं लगाऊंगी।
4: This continues for another, I think, a minute or two when they start talking to the mom about Shadi and stuff. So you guys keep thinking about it, which movie is it from? And give me a call, 919-999-8595 pe. You never know, we can just play some nice songs from one of your favorite dialogues from the favorite movie. All right, let's listen to these. These are definitely my favorite numbers. I don't know about you. You guys better listen to this one. I love these two numbers. Stay tuned. Do not go anywhere. Do not go anywhere.

आमिर खान आई थिंक टुवर्ड्स द एंड और समथिंग. एंड एक और डायलॉग था इसमें, जब दोस्त फेल होता है, दिस वॉज फनी वन, जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है और जब दोस्त टॉप करता है तो ज़्यादा दुख होता है क्योंकि हम टॉप पे नहीं पहुँचे. सो दैट वॉज इंटरेस्टिंग, दोज टू डायलॉग. सो गाइज, दोज हु आर स्टिल स्टार्टिंग, जस्ट रिमेंबर दैट यू डू नॉट नीड टू रन आफ्टर द सक्सेस, जस्ट ट्राई टू एक्सेल इन वट एवर यू डू एंड सक्सेस विल जस्ट कम आफ्टर यू. जस्ट अ लिटल ट्रांसलेशन जस्ट इन केस जेन ज़ी डू नॉट, they do not understand what I said in Hindi. All right, so that was that. I really liked that movie. It was really fun. I think I'm going to keep watching that with my son all the time. Repeat pe dekh sakte hain. It is a really fun movie. Good learnings. Usme batate hain, you know, there is a lot of learning in terms of science. उसको लेकर एंड वो जो पेन देता है प्रिंसिपल द डीन टू आमिर खान की टुवर्ड्स द एंड की आई प्रॉमिस दैट आई विल गिव टू दिस स्पेशल कैन यू नो स्टूडेंट ऑफ माइन एंड यू डिजर्व इट. एंड द क्वेश्चन दैट व्हाट वाज इट, पेंसिल क्यों नहीं ले जा सकते हैं, आई एम ब्लैंकिंग आउट, दैट वॉज वन ऑफ द क्वेश्चन, बट आई एम ब्लैंकिंग आउट ऑन दैट. थोड़ी सी और रिसर्च करनी चाहिए थी, बट आई अपोलोजाइज, बट यू गाइज गॉट इट राइट, दोज हु नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट वॉज अ फन मूवी. एनी हाउ, लेट्स लिसन टू दीज सॉन्ग्स. आई विल नॉट गेट मोर इन टू इट, बट आफ्टर दैट यू गाइज विल बी लिसनिंग टू सम सॉन्ग्स फ्रॉम मिस्टर इंडिया. सो जब मोगैम्बो खुश होता है तो मिस्टर इंडिया का बाजा बजता था. दैट इज़ अनदर अ गुड मूवी फॉर आई थिंक किड्स टू वॉच. आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड इट ऑन नेटफ्लिक्स और अमेजोन, कहीं पर मेरे को नहीं मिली है. आई डो नॉट नो वेयर टू फाइंड दैट, सो आई कैन जस्ट वॉच इट विद माई सन. इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग मूवी फॉर किड्स, जहाँ पे इट इज़ द फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली. अभी तो जेन ज़ी ने काफ़ी साई फाई देख चुके हैं, बट इट वॉज वन ऑफ दोज फर्स्ट मूवीज दैट यू नो एज अ चाइल्ड वैन यू वॉच एंड यू सी दैट ओ गायब भी हो सकते हैं, सिर्फ रेड कलर में दिखेगा एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ. सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग मूवी फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, एंड कैसे हाउ ही मीट्स श्रीदेवी एंड हवा हवाई एंड दे फॉल इन लव एंड दे हेल्प ईच अदर एंड स्टफ. सो दैट वॉज अ ग्रेट मूवी, गुड डायलॉग्स, एंड वी मिस यू अमरीश पुरी जी, बिकॉज I hats off, there was no other person who could have done justice to that particular character, Mogambo. That was amazing. Thanks. We were very fortunate to have Amrish Puri ji, you know, perform in a movie like that. So that was really fun. All right, guys. So coming up, the songs from Three Idiots, and then we'll continue with Mr. India. I'm gonna leave you guys to that. Keep listening and do not go anywhere. Radio Naira 99.9 FM HD4, 101.9 FM, 1490 AM. And we are gonna sign off here. Thanks for being the wonderful audience that you are. Just keep thinking about the two dialogues that I delivered today, and it was a trivia for you guys. Again, feel free to still call me. I mean, 919-998-595, and tell me what those movies are, or just send emails to Radio Naira. For now, you guys have a great weekend, and thanks again. Sayonara from Radio Naira. You guys take care. And again, do not go anywhere.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।